बैज सायद दे शिष हार देने बैज सायद दे या गुस्सा न के न आशा हाल राय न आशा ऐसा आय बैज सायद दे।